सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाइया, सिद्धा पुरखा किया वडियाइया। तुद बिन सिद्धि किने ना पाइया, कर्म मिले नाही ठाकर हाइया। आखण वाला क्या बेचारा, सिपती भरे तेरे भंडारा।

सचे नाम की तिल वडयाई आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखन पाहे वड्डा ना होवै घाट न जाए।

हर त्यावह तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त पए जिन हार त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी

सब करतार मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्तर हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरन काल का त्रास निबरी है हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज।

राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जानियो

मन जनी बसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे।

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जी को खावे जी को पुंचे तिसका हुए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित राखे और तारो।

कल मह इहो पुन गुण गोविंद गाहे सबसे नू कृपाल संभले साहे बिरथा कोई न जाए जी आवे तुद आहे।

0: सा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। राम
0: महाराज जी जा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

कर अपने सदा सदा रंगमान सच्चा साहिब सद मेहरबान बंद पाया मेरा सतगुर पूरा होई सर्ब कल्याण रहाओ जियो पाए पिंड जिन सजया दिता पैनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान जियो पाए पिंड जिन सजया दिता पैनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान वाहिगुरु जी का खालसा।

जिस पास बह के श्री वाहिगुरु साहिब जीओ देव गंधारी अब हम चली ठाकुर पहार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार अब हम चली ठाकुर पहार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार रहाऊ लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार कोई भला कहो भावे बुरा कहो हम तन दियो है टार जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी तिस राख

वेखै हादरा हदूरा कथना कथि न आवै तोट काथ कथ कथि कोटि कोट कोटै देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विकसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए भाख्या भाव अपार आखह मंगह देहे देहे दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मुहा के बोलन बोलिया जित सुंतरे प्यार अमृत वेड़ा सच नाओ वड़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोह द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थाप्या न जाए कीता न हो आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविय गुणी निदान गाविय सुनिया मनखिया पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बरमा गुर पार्वती माई जे हौ जाड़ा आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा इक देह बधाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा बिन भाणे के नाए करी जेती सिरठ्यो

सर्वंकर है, सर्वंकर है, सर्व पास है, सर्वनाश है, करुणाकर है, विश्वंकर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खालखंडस है, पारते पार है, करुणाकर है, अजपा जप है, तपा तप है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, तरणी कृत है, मितेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अजवा कृत है, अमृता मृत है, नर नायक है, खलकायक है, विषम पर है, करुणाल है, निपनायक है, सर्वपायक है, पवन जन गंजन है, रेप तापन है, जापू जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, कर्ता हर है, परमात्मा है, सर्वात्मा है, आत्म बस है, जस के जस है, उजांग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादूते, अलक अलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस यासे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगे कामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगे नकामे, एक अक्षरे छंद, अजय अलय अभय अभय, अभू अजू अनास अकाश, अगांज अपंज अलख अपख, अकाल दयाल लेख पेख, अनाम अकाम अगाह अटाह, अनाथे परमाथे, अजो नियमो ने, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, परमंग कर्मंग अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे, भुजंग प्रयात छंद, नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे, अगंजुल नामे समस्तल निवासे, निरकामंग विपूते समस्तल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विपूते, सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी, करी मूल कुरिंदा समस्तल निवासी, अजाय विपूते गजाय विगनी में, हरियंकरी अंकरी मूल ही में, चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते, स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्व जुगते, नुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विभूते, नुकालं प्रणा

कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात बिचारे पौन के गौन को जात बिचारे जीत फिर सब देश दिसान को बाजत टोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे पूत पवेख पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के थाम सिदारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बिसिख भेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख पौन हार जति जत तार सबै सो बेचार हजार के देख श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख सौद सिपाह दुरंत दुबाह सुसा सुनाह दुर्जान दलेंगे पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर रीन मरूर मवसन माते मतंगन मन मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिना त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अविचार है सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मवासना माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सोबातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सब को सिर नायका जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव अपने दिन साचर पूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल मै थल मै पल ही पल मै सब थाप तपेंगे पौन प्रतापन बाड जैत तोना पापन के बाव पुंज खपेंगे सार समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सवय अवलोक छपेंगे मानवेंद्र गजेंद्र नराधप जौंत लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक सोमवर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत से जम फास भरेंगे जेना श्री

सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज करदै करियै, साबरन को आज संगरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ, जो वर चाहा सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चन चन सत्र हमारे मारिया है। आप आत मुझे उबरिया, मन काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तोज जो करिया और अच्छा। राख लिहो मोहे राखनहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुस्तन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दसकंता। काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिवजु अवतरा। काल पाए गर्भ सिंधु कासा, सगल काल का किया तमासा। जवन काल जोगी सब कियो, वेदराज ब्रह्मा जूतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार तय हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव जय जचने पजायो। आदि अंत के अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को बल मुबध कियो। घट घट के अंतर की जानता, परे बुरे की पीर पछानता। टी ते कुंचर सथूला, सा पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखे, सुख पाए साधन के सुखे। एक एक ही पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जा बुद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जा ब्या करख कर तो कब हो, तुम मैं मिलत देह तर सब हो। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही तरह निरालम, जानत भेद भेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निलंब, आदनी देना दे संभ। ताका मूढ़ चरद पेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कार पान अनुमानत, महामूल कछ भेद न जानत। महादेव को कैसे दासिव, निरंकार कचिन न पिव। आप अपनी बुद्ध है जीती, बनत भिन्न भिन्न तो चीती। उमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक है रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। श्रीगिरी श्रेष्ठ दिखाय चंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगरो। दोष जिते उठवत तो पाता, सकल मलेच्छ करो रण काता। जे अस तोज तब सरनी परे, तिनके दोष्ट दुखित तो हुआ मरे। पुरख जावन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार त्या है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दोस्त रिष्ट ने तुतकाला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताव तनक में हर हो। रिद सिद्ध करमो सब होई, दुष्ट सकन कोई। एक

आव हो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाइए तन मन धन सब सौंप गुर कहु का मन्या पाइए हुकम।

कह नानक श्रेष्ठ का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मैं आया, मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाव सखी गृह मंदिर बनया, हर गाव मंगल नि सखिए सोग दुख न व्या पाए, गुर चन लागे दिन सपागे अपना पिर जा पाए, अपनी अपना पिर जा पाए, अनत बाणी गुर शब्द जाने हर नाम हर रस भोगो, कहे नानक प्रभ आपिरिया करण कारण जोगो, ए श्रीरा मेरिया इस जग मैं आए कै, क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद श्री राजा तू जग मैं आया, जिना तेरा रचन रचया सो हारे मन ना वसाया, गुर प्रसाद हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक हो शरीर प्रवान होआ, जिन सतगुर स्यो चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो हर तो मैं जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया, एहो वे संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलया दिव्य दृष्ट होई, ए श्रवण हो मेरे हो साचा सुनने नु पठाए, साचा सुनने नु पठाए, श्री रिलाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस माणी, साचे लख विडाणी ताकि गत कई ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुन हो पवित्र हो बहो, साचा सुनने नु पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया, गुरुद्वारा लाए पावनी एक ना दसवा

कार्य सब सवारणाम सबना गल्ला समरत स्वामी सो कमर विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही करते राय करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वस्या वा जी शब्द कनेरे कह नानक सचे साहेब क्या नाही करते राय साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सात सुख मन वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सपागाए कर सपागाए शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते कार कंठ को मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख हुआ इत

जियो पिंड सब तेरा वाहे गुरु कहो नानक सब बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवे प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास स्वामी सहाय। अर्जन हर गोविंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस रिठे सब

नमः, सतगुरुये नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन्माहि मिटावो। सिमरो जास विशंभरु एकाय, नाम जपत अगणत अनेकाय। वेद पुराण सिमरत सुधाख्या रहो, कीने राम नाम एक आख्या रहो। किनका एक जस जी बसावै, ताकि महिमा गनी न आवै। कांखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उदारो। सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभु का सिमरन गर्भ नाम बसाए, प्रभु का सिमरन दुख जम नसाए। प्रभु का सिमरन काल पर हराए, प्रभु का सिमरन दुश्मन टराए। प्रभु सिमरत कछ बिघन ना लागाए, प्रभु का सिमरन अंदरन जागाए। प्रभु का सिमरन पव ना व्यापै, प्रभु का सिमरन दुख ना संतापै। प्रभु का सिमरन साध, प्रभु का सिमरन साध कै संग सर्व निदान। नानक हर रंग प्रभु कै सिमरन रे सदनाओ निद। प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा। प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभु कै सिमरन तीर्थ सुनानी। प्रभु कै सिमरन दरगह मानी। प्रभु कै सिमरन होय सो भलाव, प्रभु कै सिमरन सुफल फलाव। से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक ताकै लागौ पाए। प्रभु का सिमरन सबते उच्चा, प्रभु का सिमरन उदरे मूचा। प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझाए, प्रभु का सिमरन सबके सुझाए। प्रभु का सिमरन ना ही जम त्रासा, प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहे समाए। प्रभु जी बसाए साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु काओ सिमरह से तनवंते, प्रभु काओ सिमरह से पतिवंते। प्रभु काओ सिमरह से जन परवान, प्रभु काओ सिमरह से पुरख प्रदान। प्रभु काओ सिमरह से बेमोहताजे, प्रभु काओ सिमरह से सर्व के राजे। प्रभु काओ सिमरह से सुखवासी, प्रभु काओ सिमरह सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिनी आप दयाला, नानक जन की मंगाय रवाला। प्रभु काओ सिमरह से परोपकारी, प्रभु काओ सिमरह तन सद बलियारी। प्रभु काओ सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु काओ सिमरह तन सुख बिहावै। प्रभु काओ सिमरह तन आत्म जीता, प्रभु काओ सिमरह तन निर्मल रीता। प्रभु काओ सिमरह तेन अन्ध कनेरे, प्रभु काओ सिमरह बसह हर नेरे। संत कृपा ते अन्दिन जाग, नानक सिमरन पूरा भाग। प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहु न झूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी। प्रभु कै सिमरन ने चले आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बेगासन। प्रभु कै सिमरन अनाथ झुनकार सुख, प्रभु सिमरन का अंत न पार। सिमरै से जन जन को प्रमया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच औकुंठ जाते। हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगले अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तन पाया। सलोक दीन दर्द दुख पंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सोत मीत न भाई, मन गुहा नाम तेरा संसाई। जय माँ भयान दूत जम दलै, तै केवल नाम संग तेरा चलाए। जय मुश्किल हो वैत भारी, हर को नाम खिनमाही उधारी। अन पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावहु सुख नेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोड़ी बंधना पराय, हर का नाम जपत निस्तराय।

ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइए साधकै संग जे मार के गनी जाहि न को सार का नाम हुआ संतोषा जे पैंडे महंत गुबारा हर का नाम संग उजियारा जह पंथ तेरा कोना सिया नू हर का नाम तै नाल पछानू जय महाभयान तप्त बहु काम तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम जह त्रिखा मन

हर जस करत संत दिन रात हर हरे औखद साध कमातु हर जन कह हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मंतन रंग रते रंग एकै नानक जन कह बिरत विवेकै हर का नाम जन कौ मुक्त जुक्त हर कै नाम जन कौ तृप्त भुक्त हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जप कपरै न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर

होवे, बहुर उसका विश्वास न होवे, जिसकी वस्तु से आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल। नानक साहिब सदा दयाल, अनक पात माया के स्तर पर होवत जान, अनेत बिरह की छाया सुरंग लावे, ओ बिन से ओ मन पुछतावे, जो दिसे सो चालनार। लाटरे उते अंधंधार बटाऊ, सो जो लावे ने हता को हाथ ना आवे, के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राज जोवन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती यस वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेखास्ता, मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आप सुपर कर्त गुमान। आस्त्र भग साद की सरन, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे, मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरहे, मिथ्या नेत्र पेक्त पर त्रया रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वा, मिथ्या चरण पर विकार काओ तावह, मिथ्या मन पर लोभ लुभावह, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल दे, नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आरजा साच, बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम, बिना तन अंध मुखावता कै दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाए, मेघ बिना जो खेती जाए, गोविंद भजन बिन बृथे सब काम, जो कृपन के निरार्थ दाम, धन धम ते जन जे घट बस्यो हर नाव, नानक ता कह बलबल जाओ। रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत, जानन हार प्रभु परवीन, बाहर पेख न काहू पीन, अवर उपदेश आप न कराए, आवत जावत जन्मे मराए, जिसके अंतर बसाए, निरंकार तिसकी सीख तरह

नाही रसना परस मन मैं प्रीत निरंजन दर्श पत्र रूप न पेख है नेत्र साध की टैल संसंग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जान आप कौ मंदा अंगर प्रसाद बिख्या पर हरे मन की बास न मन ते तरह इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक गोट मदे को ऐसा परस वैष्णो सो जस ऊपर सुप्रसन्न विष्णु की माया ते हुए पिन कर्म कर दो वह निकन किस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भक्त कीर्तन संग्राचे मंत्र यंत्र सिमरन गोपाल सब उपरोत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानको वैष्णो परंगत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मनते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म सात संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहर कर टहल करै नित नीत मंत्रने अर्पै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म मैं सोधै राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कै उपदेश जग जीवे आर की कथा हृदय बसावे सो पंडित कर जो नावे वेद पुराण स्मृत बूझै मूल सूखम मैं जानै असूल चौ वरना कौ दे उपदेश नानक उस पंडित कौ सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तस्कीगत होए सासंग पावै जन कोए कर कृपांतर और धारै पस प्रेत मुक्त पाथर कौतारै सर्व रोग काय औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै ना पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत नाम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास संतन पाए तिन पाया सदा निक निक हर जान सो दास दरगै परवान अपने दास कहु आप कृपा करै तिस दास कहु सब सो जी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुग नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जीव मुक्त सो कहावै तैसा हर तैसा सो सदा आनंद तह नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरता ऐसा ही जुग नान को पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाव जेत जित कर राखे तैसा तिन नाओ आपे कर्म करावन जो पावै सोई फुन हो पसरियो आप होए अनपत रंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल न सिमर सिमर नानक भय निहाल सलोक उस्तत करहे अनेक जान अंत न पारावार नानक रचना प्रवरची बहुविधि अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट मन प्रभय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी स्रोते कई कोट आत्म ध्यान धारा है कई कोट कब काब विचार है कई कोट नव तन नाम त्यावा है नानक करते का अंत न पावा है कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिज्ञ आत्म निकोर कई कोट पर दर्प को हिरा है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश प्रमाहे जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर बिरख ने पजाए कई कोट पवन पानी बैसंत्र कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखियत्र कई कोट देवदानव इंद्र सरशत्र सगल समगरी अपने सूतार नानक जिस जिस भावै तिस तिस निसतार कई कोट राज सतामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्थशास्त्र कई कोट कीरतन समोद कई कोट नाना प्रकार जानता कई कोट किए चर जीवे कई कोट गरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख्य किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच

कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीव है मराए, कई कोट बहु जो नीफरा है, कई कोट बैठती खाए, कई कोट काल थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मैं चंत, जय जय पाणा तह तह राखे नानक, सब किश प्रभ कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम राम संगतिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कहो खोजंते, आत्मे पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन कहो मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन कहो होए आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मण, कई कोट हुए अवतार, कई जो कीनो विस्तार, कई बार पसरे पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने बपात,

अपने का हुक्म पहचाने, जिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण का एक न जानो, आठ पैर प्रभ बसह हजूरे, कहु नानक सही जन पूरे।

ते कहो तुम कवन सुना था। राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी।

हो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवर नाम जपावहो। भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन हो सीशार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुखा उतनास नानक नाम जपहो गुणता सुपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतरे ही सुवाओ नेत्र हो पेख दर्श सुख होए मन बिकसै साध चरण तोहे भक्त ना काए मंत्र रंग बिरला को पावै संग एक बस

राज भोग बड़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जापती हर हर नीत भली सो करनी सो बात मंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सा संप्रभ देह निवास सर्व सुख नान प्रगास श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधिया आपन किया नानका आपे ही फिर जाप असटपदी

तब हरख सो कहक सह व्याप्त जब अपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहा कि सोवत भरम आप खेलिया भतीजा नानक करने हार नाम दूजा जब हो प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त काहो किस काहो गनी जावे कह हरगम अपार तब नरक सुर कौ कौनिया उतार जब निर्गुण प्रभ सह सुपहाय तब शिव सक्त कहो कित ठाए जावे आप है आप आप जब आप है आप अपनी जो तरह तब कवन निडर कवन कत डराय अपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ होए तब जम की द्रास कहो किस होए जब अभिगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही अचर जा नानके अपन रूप आप ही ऊपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पातो होता तय बिन मैं कहो हो क्या तुत आन जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शल शिद्र लगत कहो कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तय सह भूकवन तृप्तावे कर्ण करावन कर नहार नानक करते का नाहि सुमार जावे अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कलाया पै परवीन तह बेद कतेब कहा को चीन जावे अपने आप उरत हरे तौ सगन आप सगन कहा बिचारे जय अपन ऊंचा अपने आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानहु आप जय अशल अशेद भेद समाया हुआ किसै व्याप्त माया

साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गावो प्राण तरन का है सुआओ आठ पैर प्रापे खो नेरा मिटाया ज्ञान बिनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन छे नानक फल पावो हलत पलत दुइले हो सवार राम नाम यंत्र उर तार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसाय तिस साच परीखिया मंत्र नाम जपो लेवलाय दुख दर्द मन ते पहो जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निबह खेप तुम्हारी एक काटे एक रखो मन माहे नानक बहुर ना बह जाए देसो ते दूर कहा को जाए उबरे रख नहार दे आए निरपहो जपाय सगल पहो मिटाय प्रभु कृपा ते प्राणी छुटाए जिस प्रभु राखै तिस नाहीं दुख नाम जप मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन कौ कोई न पहुचनार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेख तुदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत